जिस पर रे वह फने के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों न वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुब अब्बा पाप दें बनो के अमल फी की तू बा इटालिया अस्तु अल्लाह किबामों